और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं।

और अगर खुदा तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है।

0: देखो ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि खुदा से पर्दा करें। सुन रखो, जिस वक्त ये कपड़ों में लिपट कर पड़ते हैं तब भी वो उनकी छुपी और खुली बातों को जानता है, वो तो दिलों तक की बातों से आगाह है।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम।
2: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए।
3: अलैका या सय्यदी।
2: यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
3: سيد الأولين والآخرين
2: FM 92.6.

वो फलक रह गया, वो जमीन रह गई। पढ़ के नसरू मिन अल्लाह फतहू करीब, जब हुए हम रवा सुए कुए हबीब। पढ़ के नसरू मिन अल्लाह फतहू करीब,

वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद, उसके बाद कुछ और चले तो अबू नायला ने फिर कहा कि भाई एक बार और सर सूंघने दो। उसने कहा ठीक है। अब की बार अबू नायला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके सर में हाथ डालकर जरा अच्छी तरह पकड़ लिया तो बोले ले लो अल्लाह के इस दुश्मन को। इतने में उस पर कई तलवारें पड़ी लेकिन कुछ काम ना दे सकी। ये देखकर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने झट अपनी कदाल ली और उसके पेड़ों पर लगाकर चढ़ बैठे। कदाल आर पार हो गई और अल्लाह का ये दुश्मन वहीं ढेर हो गया। हमले के दौरान उसने इतनी जबरदस्त चीख लगाई थी कि गिर्दोपेश में हलचल मच गई थी और कोई ऐसा किला बाकी ना बचा था जिस पर आग रोशन ना की गई हो। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कार्रवाई के दौरान हजरत हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु को बास साथियों की तलवारों की नोक लग गई थी जिससे वो जख्मी हो गए थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। चुनाचे वापसी में जब ये दस्ता उरैस पहुंचा तो देखा कि हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ नहीं है, इसलिए सब लोग वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद हारिस भी उनके निशानात कदम देखते हुए आन पहुंचे। वहां से लोगों ने उन्हें उठा लिया और बकई गरकत पहुंचकर इस जोर का नारा लगाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनाई पड़ा। आप समझ गए कि उन लोगों ने उसे मार लिया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आपने फरमाया ये चेहरे कामयाब रहे। उन लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा भी ए अल्लाह के रसूल और इसके साथ ही इस तागूत का सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल पर अल्लाह की हमदो सना की और हारिस के जख्म पर लाबे दहन लगाया जिससे वो शफायाब हो गए और आइंदा कभी तकलीफ ना हुई। इधर यहूद को जब अपने तागूत काब बिन अशरफ के कत्ल का इल्म हुआ तो उनके हट धर्म और जिद्दी दिलों में रोब की लहर दौड़ गई। उनकी समझ में आ गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महसूस कर लेंगे कि अमनो अमान के साथ खेलने वालों, हंगामे और इस्तराबात बपा करने वालों और अहदो पैमान का एहतराम ना करने वालों पर नसीहत कारगर नहीं हो रही तो आप ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज ना करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने इस तागूत के कत्ल पर चूना किया बल्कि एकदम दम सादे पड़े रहे, इफाए अहद का मुजाहरा किया और हिम्मत हार बैठे, यानी सांप तेजी के साथ अपने बिलों में जा घुसे। इस तरह एक मुद्दत तक के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरून मदीना से पेश आने वाले मतवक्के खतरात का सामना करने के लिए फारिग हो गए और मुसलमान इन बहुत सी अंदरूनी मुश्किलात की बारे गिरा से सुबकदोश हो गए जिनका अंदेशा उन्हें महसूस हो रहा था और जिनकी बू वक्तन फवक्तन वो सूंघते रहते थे। ग़ज़वा बुहरान ये एक बड़ी फौजी तलायागर्दी थी जिसकी तादाद 300 थी। इस फौज को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउल अव्वल के आखिर में बुहरान नामी एक इलाके की तरफ तशरीफ ले गए थे। ये हुजाज के अंदर फरा के अतराफ में एक मादनियाती मकाम है और रबीउल अव्वल आखिर और जमादीउल अव्वल के दो महीने वहीं कयाम फरमा रहे, उसके बाद मदीना वापस तशरीफ लाए। किसी किस्म की लड़ाई से साबका पेश न आया। सरैया ज़ैद बिन हारिसा जंगे उहद से पहले मुसलमानों की यह आखिरी और कामयाब तरीन मुहिम थी जो जमादियुल आखिरक में पेश आई। वाकये की तफसील ये है कि कुरैश जंगे बदर के बाद से कलक व इस्तराब में मुब्तला तो थे ही, मगर जब गर्मी का मौसम आ गया और मुल्क शाम के तजारती सफर का वक्त आन पहुँचा तो उन्हें एक और फिक्र दामनगीर हुई। उसकी वजाहत इससे होती है कि सुफवान बिन उमैया ने, जिसे कुरैश की तरफ से इस साल मुल्क शाम जाने वाले तजारती काफले का मीर कारवां मुंतखब किया गया था, कुरैश से कहा मोहम्मद और उसके साथियों ने हमारी तिजारती शारा हमारे लिए पुरसोबत बना दी है, समझ में नहीं आता कि हम उसके साथियों से कैसे निमटे। वो साहिल छोड़कर हटते ही नहीं और बाशिंदगान साहिल ने उसे मसलहत कर ली है, आम लोग भी उन्हीं के साथ हो गए हैं। अब समझ में नहीं आता कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। अगर हम घरों में ही बैठे रहे तो अपना असल माल भी खा जाएंगे और कुछ बाकी ना बचेगा, क्योंकि मक्के में हमारी जिंदगी का दारोमदार इस पर है कि गर्मी में शाम और जाड़े में हबशा से तिजारत करें। सफवान के इस सवाल के बाद इस मौजू पर गौर व खौज शुरू हो गया। आखिर अस्वद बिन अब्दुल मुतलिब ने सफवान से कहा तुम साहिल का रास्ता छोड़कर इराक के रास्ते सफर करो, वाज़े रहे कि ये रास्ता बहुत लंबा है, मदीने के मशरिक में खासे फासले से गुजरता है, कुरैश इस रास्ते से बिल्कुल ना वाकिफ थे। इसलिए अस्वद बिन अब्दुल मुतलिब ने सफवान का मशवरा दिया कि वो फिरात बिन हयान को, जो कबीला मकर बिन वायल से ताल्लुक रखता था, रास्ता बताने के लिए रहनुमा रख ले, वो इस सफर में इसकी रहनुमाई कर देगा।
इस इंतजाम के बाद कुरैश का कारवां सफवान बिन उमैया की कयादत में नए रास्ते से रवाना हुआ, मगर इस कारवां और इसके सफर के पूरे मंसूबे की खबर मदीना पहुंच गई। हुआ ये कि सलीद बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मुसलमान हो चुके थे, नईम बिन मसूद के साथ, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बादा नोशी की एक मजलिस में जमा हुए। ये शराब की हुरमत से पहले का वाकया है। जब नईम पर नशे का गलबा हुआ तो उन्होंने काफले और उसके सफर के पूरे मंसूबे की तफसील बयान कर डाली। सलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी बर्क रफ्तारी के साथ खिदमत नबवी में हाजिर हुए और सारी तफसील कह सुनाई। सामईन, वक्त की कमी के बायस हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करेंगे। इंशाल्लाह अपने इसी सिलसिले का आगाज एक बार फिर अगली नशिस्त में करेंगे। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।

0: keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. UCP Ki Duniya.
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Broadcasting from the University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: Welcome back, dear listeners. You're tuned into FM 92.6 UCP Ki Dunya, where we're diving into the deep world of language and research, jisme hamare topic ka naam hai Beyond the Classroom, ELT and Research. Hamare saath hain Dr. Habib Qazi, Ayman, Shamir. So, Dr. Saab, I have again a little question from you. I believe that you have a very vast research background and aapne kafi impact factor journals mein publish bhi kiya hua hai. To ye kis tarah se aapke teaching mein reflect hota hai?
4: हाँ, अब ये एक, जैसे हम पहले ELT की बात कर रहे थे, तो ये उससे बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है.
3: बिल्कुल सर.
4: जब आप कोई ऐसा कंटेंट जिसे एकेडमिकली जिसका ताल्लुक रिसर्च से हो और ऑब्वियसली उसके बैकग्राउंड में टीचिंग है, तो ये टीचिंग मुख्तलिफ है. ये टीचिंग इस तरह मुख्तलिफ है कि लेट्स सपोज आप जैसे BS लेवल पे, ये शामिर मेरे साथ बैठा हुआ है, इज़ माई स्टूडेंट, इज़ अ सेवन सेमेस्टर स्टूडेंट. तो आई टीच दिस क्लास रिसर्च मेथडोलॉजी. और भी कोई भी सब्जेक्ट ले लें, तो ये आम तौर पे ये कंटेंट आप जनरली एक लेक्चर मोड में देते हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज स्किल्स नहीं इम्पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. बट लाइक एट द सेम टाइम इट डजंट मीन कि आपकी क्लास कम्प्लीटली टीचर सेंटर्ड हो जाए. हो भी सकती है, हो जाती भी है, लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ एफर्ट्स चाहिए. ये तो खैर लाइक शामिर इज इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन वेदर माय क्लास इज कम्प्लीटली लेक्चर फोकस्ड, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड.
5: मैं आपके देखिए, रिसर्च इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी एंड इट इज द आंसर टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो एज आई एम द स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, तो आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड. सो रिसर्च हेल्प मी रिजॉल्व दैट क्वेश्चन अंडर योर गाइडेंस.
4: थैंक यू. अब आपका सवाल था कि जो मेरी रिसर्च, जो पब्लिश रिसर्च है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है जो स्टूडेंट्स की टीचिंग के हवाले से. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो हायर एजुकेशन के अंदर जो स्टडीज़ हैं, उसमें रिसर्च के ऊपर मेन फोकस है. अब चूंकि मैं एक इंटरनेशनली पब्लिश्ड ऑथर हूँ, तो मैं वही स्पिरिट और वही स्किल्स जो मैंने ओवर द ईयर्स एक्वायर की हैं, वो स्टूडेंट्स में मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ. नॉट ओनली एट, बिकॉज आई एम टीचिंग एट PhD लेवल 2. सो वो जो रिसर्च स्किल्स हैं उनके ऊपर फोकस रखते हैं और वो स्टूडेंट्स में उन्हें इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं. अब उसके ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स व्हेन वी डू दैट, तो उसका कोई मेजरिंग क्राइटेरिया भी होगा. तो हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो MS लेवल के हैं और जो PhD लेवल के हैं, दे हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल इवन बिफोर कम्प्लीटिंग देयर स्टडीज. तो मैं समझता हूँ कि ये एक काफ़ी स्टूडेंट्स के हवाले से ये काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है.
5: सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी बात में एड ऑन करना चाहूँगा कि रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल थिंग इन आवर लाइफ. जैसे हम क्या नाम है, अगर टीचिंग की जॉब के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो उधर भी दे आस्क फॉर योर रिसर्च वर्क, ठीक है? तो वही प्रेफर किया जाएगा जिसका रिसर्च वर्क ज़्यादा अच्छा होगा. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़, तो वो भी आपका रिसर्च वर्क देखते हैं. तो इसकी बहुत अहमियत है मेरे ख्याल से रिसर्च की, आपकी ज़िंदगी में भी, मसले हल करने में भी, और आपकी एजुकेशन में भी.
4: बिल्कुल. और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ शामिर, कि रिसर्च की अदरवाइज लाइफ में भी, यानी इसको आप किसी आइसोलेशन में नहीं देख सकते. यानी कम से कम मैं इन चीज़ों को, खा वो रिसर्च का एस्पेक्ट हो, टीचिंग का एस्पेक्ट हो, या बाकी जैसे आपकी लाइफ है, तो इन सारी चीज़ों को मैं एक यूनिटी में देखता हूँ, इनको आइसोलेशन में नहीं देखता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रिसर्च पढ़ा रहा हूँ, तो अब हमारा एक बहुत सब्सटेंशियल जो कॉन्टेंट है वो रिसर्च एथिक्स पे है.
5: बिल्कुल.
4: तो एथिक्स से मुराद,
5: एथिक्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू थिंग्स. जैसे अगर आप कोई सैंपल्स ले रहे हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो उनसे आपने कंसेंट लाजमी लेना. तो इस तरह से मजीद काफी एथिक्स हैं जो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं.
4: इससे हटके भी सिर्फ कंसेंट की बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर नाउ यू आर ट्राइंग टू create some potential research questions.
5: Yeah.
4: तो जब आप research questions को आप create करें तो उसमें भी आपकी ethical considerations को prioritize किया हो कि हम कोई ऐसा ऐसा aspect तो life में नहीं investigate करना चाह रहे लोगों के बारे में जो के किसी वल्नरेबल कम्युनिटी के हवाले से हार्मफुल हो,
5: जो किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट करे,
4: सेंटीमेंट्स को हर्ट करे,
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: और इसी तरह जैसे जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनको फर्दर मार्जिनलाइज कर दिया जाए,
5: या हम किसी के साथ पर्सनल तो नहीं हो रहे, जो सैंपल्स हम लेके जा रहे हैं या हम जो सर्वेस कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस तो नहीं है बंदे से,
4: exactly.
5: आपके रेलिवेंट टू द रिसर्च टॉपिक क्वेश्चंस होने चाहिए, ये भी एथिकल कंसीडरेशंस में आता है।
4: सो एथिक्स, रिसर्च, लाइफ, तो ये एक यूनिट के तौर पे इनको इनको देखना।
3: राइट, तो सर ये तो था आपकी क्लास में आप किस तरह से रिसर्च पढ़ाते हैं। शामिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि हाउ ही हैज़ बीन द पार्ट ऑफ दीज क्लासेस। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ओवरऑल इंग्लिश डिपार्टमेंट में रिसर्च का क्या सिनारियो होता है, लाइक हाउ यू गाइस टीच इट एंड हाउ यू टेक इट इन द एंटायर डिपार्टमेंट।
4: इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत वाइब्रेंट रिसर्च कल्चर है इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और हमारे बहुत सारे जो प्रोफेसर हजरात हैं, इट्स नॉट जस्ट मी लाइक हु हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, देर आर बेटर रिसर्चर्स देन आई एम, एंड लाइक मैनी ऑफ देम हैव पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स। और वो वही रिसर्च कल्चर जैसे कि मैंने पहले बात की थी अपने हवाले से, वो भी बड़ा स्ट्रांगली इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। और हमारे जो ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स हैं जैसे एमएस वाले हैं या पीएचडी वाले हैं, वो उनके साथ को ऑथरिंग हो रही है। तो एंड लाइक मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ आर स्टूडेंट्स करेंटली एनरोल्ड इन एमएस एंड पीएचडी क्लासेस हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स।
3: बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, नो डाउट।
4: और अब शामिर है जैसे, ये तो अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, इनके हाँ भी हम जो है ना एक टर्म पेपर के ऊपर हम बहुत इंसिस्ट करते हैं। और जैसे इस क्लास में इट्स अ ह्यूज क्लास लाइक सम 47 स्टूडेंट्स, तो इनमें से कई बच्चों ने दे आर मोर देन हाफ वे थ्रू देयर रिसर्च आर्टिकल्स।
5: जी, ये चीज़ भी एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटेशंस जो कि हम मतलब स्लाइड रीडिंग भी कर देते हैं अक्सर या क्रैमिंग भी हो जाती है, उसकी जगह वी आर डूइंग एक्चुअली द प्रैक्टिकल वर्क, हम रिसर्च कर रहे हैं जिसका मेन फ्यूचर फायदा भी होगा, वी विल नो हाउ टू डू द थिंग्स इन दैट वे। और अगर मैं इसमें क्लास इन्वायरमेंट की बात ऐड कर दूं तो क्लास इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से बहुत फ्रेंडली और कोऑपरेटिव होता है, जैसे आप हमेशा हमें क्या नाम है क्वेश्चंस पे अप्रिशिएट करते हैं और आप खुद इंगेज करते हैं कि मेरे से क्वेश्चन करें, आप इस चीज़ पे खुश भी होते हैं बाकायदा नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मोटिवेशन भी इससे आती है कि आप इनक्रेज भी कर रहे हैं हमें क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए, और आपकी असिस्टेंस दैट यू ऑफर्ड अस कि आप किसी भी वक्त मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं अदर देन द क्लास, आपको कोई कंसर्न हो, आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे पास आके उस पर गाइडलाइंस ले सकते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग।
4: एंड आई एम श्योर लाइक मेनी अदर टीचर्स आर डूइंग द सेम, डोंट दे,
5: या या दे आर।
4: तो ये इससे हम ओवरऑल जो है ना जो यूसीपी में एक जनरली एक रिसर्च के हवाले से जो एक एम्फेसिस है, हम उसके साथ भी डिपार्टमेंट को अलाइन करवाते हैं।
3: Say righto, sir. So as we wrap up today's insightful discussion on Beyond Classroom and ELT research, we hope that this session has sparked new ideas and perspective on how language teaching research that can extend beyond the traditional setting. मतलब काफी कुछ हमने आज जाना कि foreign में किस तरह से पढ़ाया जाता है, हम किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं. तो I hope it was very interesting. Well, a big thank you to our esteemed guests and enthusiastic listeners as well for being a part of this engaging conversation. So please stay curious, keep exploring, continue pushing the boundaries of learning until next time. Because we have already been doing shows, aur hum inshallah next time aapke paas ek aur new topic ke saath, kuch aur new ideas ke saath aayenge. So this is your host Nayab Afzal. Keep tuning in for more inspiration and more discussions. Take care and goodbye.

0: Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز ایک نئی سوچ एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए

यकीनन आप लुत्फंदोज हुए होंगे। सुन मंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। ये फिल्म की फिल्म साज भी मैडम नूर जहां थी, इस फिल्म के हीरो भी उनके शौहर थे इजाज़ दुरानी साहब, और ख्वाजा साहब ने इसकी धुन तरतीब दी थी। गुलाम अली ने वो गाया और उसके बाद जो पहला कलाम गाया खुद, वो तो लोगों को पता ही नहीं लगा ना, गैर मारूसा नाम था। दुख का मकाम यही है कि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि प्लेयर कैसा खेला है, ये नहीं देखा जाता कि उसका कोच कौन है। फनकार ने गाया कैसे, ये नहीं देखा जाता कि उसका उस्ताद, उसको सिखाने वाला कौन है, धुन तरतीब देने वाला कौन है। असल में उसको कहते हैं ग्लेशियर ना हो तो दरियाओं में रवानी खत्म हो जाए। अब यकीनन मुझसे एग्री करेंगे। तो उसके बाद गुलाम अली ने जो अपना पहला गीत रिकॉर्ड करवाया, वो अभी जिक्र पहले हुआ था सूफी तबस्सुम मरहूम साहब का। गवर्नमेंट कॉलेज में फारसी अदब के उस्ताद थे, बल्कि फारसी डिपार्टमेंट को, शोबे को बख्श कहते हैं उसको फारसी में, डिपार्टमेंट को, ये कायम ही सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम मरहूम ने किया था। और एक और मजे की बात बताऊं आपको, महसूस ना कीजिएगा, हम लाहौर के लोग मजे की बात बहुत बोलते हैं। तो ये मेरा तकिया कलाम है, मुझे मजा भी आता है कहने में, आप इंजॉय कीजिए। क्या हुआ कि ईरान ने जब पाकिस्तान को तस्लीम किया, सबसे पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान मार्ज वजूद आने के बाद तस्लीम किया, रिकग्नाइज किया सफारती महाज पे, वो ईरान था। ईरान को जब लाहौर में अपना कौंसल खाना खोलना था तो उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी कि जहां वो फारसी, जाहिर सबको आती थी, पुराने लोगों को फारसी मजमून हुआ करता था। तभी आपको अपने दादा वादा, अगर अल्लाह उनको हयात रखा हुआ है, पूछिए, फारसी पढ़ी होगी उन्होंने। उन्होंने ढूंढा तो सूफी गुलाम उस्ताद तबस्सुम आगे आए और उन्होंने खाना फरंगे ईरान, जिसको कहा जाता है आजकल अंग्रेजी में कहा जाता है ईरानियन कल्चरल सेंटर, ये पहले हुआ करता था माल रोड लाहौर पे, हुआ करता था खाना फरंगे ईरान, जो कि बाद में हालात के पेश नज़र, सिक्योरिटी के पेश नज़र, अभी जे लोड पे उसको मुंतकिल कर दिया गया है। सूफी तबस्सुम साहब की फारसी की गजल का उर्दू तर्जुमा, पंजाबी तर्जुमा, फारसी की गजल का पंजाबी तर्जुमा आप सुन के हैरान होंगे, क्या बड़े लोग थे सूफी तबस्सुम साहब। और मैं उनको इसलिए भी जानता हूँ ज़्यादा, एक तो उनकी जो पोती हैं जो उनके सिलसिले को आगे लेके चल रही हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं डॉक्टर फौजिया तबस्सुम, उसी घर में मुकीम हैं जहाँ सूफी तबस्सुम साहब रहते थे समनाबाद में, ठीक है जी। और उनकी चीज़ें भी करती हैं, प्रोग्राम भी करवाती हैं, इंशाल्लाह किसी दिन उनको भी लेके आऊँगा अगले प्रोग्राम में, जिंदगी रही तो। तो उन्होंने फारसी और गजल किसकी थी, गालिब की, कौन नहीं जानता गालिब को, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराहना हुआ। गालिब के बगैर तो कोई महफिल जचती ही नहीं थी ना, दिल्ली में सजती ही नहीं थी, तभी लोगों ने कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराहना हुआ। सो गालिब पहले फारसी में शेर कहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मुश्किल है, लोगों ने कहा मियाँ सारा वक्त इतने तंग दस्त रहते हो, हालत तुम्हारी पतली है, कहते हो गुजारा नहीं होता, भाई फारसी छोड़ के उर्दू में कहो। गालिब ने उर्दू में कहा, सूफी साहब ने फारसी की गजल उठाई, चूंकि फारसी के उस्ताद थे, जानते थे, फारसी में कलाम भी बड़ा कहा, कभी जिंदगी रही तो जरूर सुनवाएंगे आपको, उसका उन्होंने सीधा पंजाबी में तर्जुमा कर दिया। अब जब मैं बताऊंगा आपको तो आप अपनी जगह से उठ खड़े होंगे, अगर आप उठ नहीं खड़े होंगे तो मुझे दुख होगा। गुलाम अली का जो नाम है इसी गीत की बदौलत है। मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा, एवें लड़न बहाने बहाने लभना है की सोचना है सितमगार आजा। सो ये पंजाबी सबसे पहला गुलाम अली का गाना, उसके बाद तो गजल, उनको गजल का उस्ताद कहना शुरू कर दिया लोगों ने। क्योंकि देखिएगा मौसीकी की बात हो रही है, थोड़ा सा ज़रा अपना भी मैं इजहार करूँ कि मुझे भी थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध है। हर वो बंदा किसी भी फील्ड में वो कदम रखे, एक चीज शर्त है, बतौर उस्ताद मेरी आप सबको भी, बुजुर्गों को नहीं, ये मेरे बच्चों के लिए जो कि मेरे ज्यादा सामईन हैं, उनके लिए मेरी ये एक वर्ड ऑफ एडवाइस है कि एक शर्त लाजिम है कि आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं ना, उस फील्ड को जेबे तन कर लीजिए, उसको पहन लीजिए। तो आप देखिएगा कि जैसे रूमी ने कहा था, तू मन शुदी मन तू शुदा, अल्लाह ताला को, मैं तू हो जा तू मैं हो जा, रूमी अपने अशार में कहते हैं। तो आपको भी बेटा ये शर्त है कि आपको उस सब्जेक्ट में गौताजन होना पड़ेगा। तो गुलाम अली को
ऐसा सीखा उन्होंने, सीखा तो हुआ था पहले बरकत अली खान के शागिर्द, मौका नहीं मिला था, मौका मिला फिर उन्होंने गाई गजल। सुन के आप हैरान होंगे, नासिर काजमी साहब की, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, ठीक है, सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी, गुलाम अली। फिर हसरत मोहानी की, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ठीक है ना। फिर पंजाबी में आ जाई, निचंबे दिए बंद कर लिए, तेनु जेड़े वेले रब ने बनाया, ते सोचा विच आप पै गया, दूजा चन्न कितनों चढ़ाया। सो काफी है मेरे ख्याल में, ये वो गुलाम अली हैं। सो ये वही कसूरी घराने के सपूत बड़े गुलाम अली खान साहब के दूसरे भाई सर बरकत अली खान, जिनका अपना भी बड़ा मशहूर एक गायकी है, ओ हो गुलाम अली ने वो भी गाया अपने उस्ताद जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, बागों में पड़े झूले तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले, साजी ने गाया था, गुलाम अली ने भी खूब गाया। तो ये वो लोग थे, तो बात से बात निकलती है। सो लिहाजा ये जो बरकत अली खान थे, इनकी नवासी का आगे पोता है सज्जाद अली। मेरा ख्याल है आज का जो प्रोग्राम है ना, इसी पे खत्म करूंगा। सज्जाद अली कौन? सज्जाद अली कराची टेलीविजन के, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन के बड़े मोतबर लिखारी, डायरेक्टर और सबसे बढ़कर होस्ट अनवर मकसूद, बजिया के छोटे भाई, कितना बड़ा नाम है। मुइन अख्तर के साथ उनकी आपको याद है, बुशान सारी के साथ उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, उस प्रोग्राम का नाम था सिल्वर जुबली। मुझे नहीं याद क्योंकि 64 में पाकिस्तान टेलीविजन का इजरा हुआ, जहां तक मेरी आवाज काम करती है, कुछ 65 में मैडम के गाने अभी तक आ रहे होते हैं, ए वतन के से जीले जवानों, मेरे ढोल सिपाही तन रब दिया रखा, करनैल नी जर्रैल नी, ठीक है मैडम क्या ए पुत्र हटाते नहीं दिखते, ये भी सुवीत बसुम का है, इसमें किसी दिन और ही कोई प्रोग्राम होगा सुवीत बसुम के नाम के साथ। सो ये सज्जाद अली को मौका मिला, 13-14 साल का उनका सिन था, और इतफाक देखिए जो मेहमानान बुलाए हुए थे, मेहमान भी होते थे, मैडम नूर जहां बैठी हुई थी स्टेज पर, उन्हें बुलाया तो उन्हें कहा कि मैडम आपका गाना एक बच्चे की आवाज में सुनाना चाहूंगा, आपसे इजाजत लेके, आपसे पसंद अदब, बड़ी फनकारा थी, उन्होंने कहा बिल्कुल गाए। उसने गाया इतना मुश्किल गाना, बावरी चकोरी करे चंदा से चोरी चोरी, हाँ, दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार, और मैडम को मैंने देखा, मैडम को जब चीज को पसंद मैडम को आती थी ना, मैडम की एक चीज बड़ी मशहूर थी, उनका एक अंदाज, एक अंग में कहूंगा, सुरीले चुके लोग उनवान है, अंग कहूंगा मौसीकी की दुनिया में, क्या अंग था, साड़ी पहनती थी। मैंने मैडम को कभी भी रिकॉर्डिंग करवाते हुए शलवार कमीज में महबूस नहीं देखा, साड़ी पहन, और गाते हुए भी जब खुद उससे लुत्फंदोज होती थी, साड़ी के पल्लू को लपेटती थी और निचले सुरों में आते उसको अनफोल्ड करती जाती थी, खोलती जाती थी, या जब किसी चीज की सताइश करती थी, तौसीफ करती थी, तारीफ करती थी, फिर भी यही अमल दोहराती थी। मैंने मैडम को देखा कुर्सी पे बैठी हुई, जब सज्जाद अली ने अंतरा कहा, इसका मिस्रा कहा ऊपर जाके, तो मैडम अपने उसको पल्लू को लपेट रही थी और सर मारी थी, और मैडम अपने होंठों से भी बड़ी, आजकल की तो लड़की लड़कों को बड़ा शौक है ना सेल्फी में, खास तरह पे एक पाउच टाइप बना के अपनी तस्वीर उतरवाते हैं, तो मैडम गाते हुए इस तरह की करती थी, खुद भी जब उनको मजा आता था, उससे पता लगा कि मैडम ने इस आवाज को पसंद करती है। बाद में तो खैर थोड़ा अरसा होता है, वो उस सिल्वर जुबली प्रोग्राम, ये वही प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तान में और बहुत फनकारों को मुतारिफ करवाया, जिनमें तीन नाम बहुत बड़े अहम है, तीन क्रिश्चियन बहनें थी बेंजामिन सिस्टर्स, वो भी सिल्वर जुबली प्रोग्राम में तारुफ हुई। बड़े उनके गाने हैं, उनमें एक उनका मुझे एक तराना बड़ा पसंद है, आलमगीर के साथ, आलमगीर देखा ना था हमने ये समा, ये रैनी लड़की के साथ उन्होंने गाए हुए, वो था कि नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आजुदा साथों को संभालना है, उम्मीद सुबह कमाल रखना ख्याल रखना, बहुत खूबसूरत गाया हुआ ये कोरस है। तो ये अनवर मकसूद को सेहरा जाता है सज्जाद अली को, उसको सज्जाद अली आप जानते हैं, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस एक डेढ़ मिनट और सज्जाद अली को वाइंड अप कर दूं कि क्या क्या उन्होंने नहीं गाया सज्जाद अली ने, तेरे और मेरे घर के बीच में लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा, क्लासिकल का सीखा हुआ है। फिर उर्दू में देख लीजिए कहाँ कहाँ जो सज्जाद अली ने गा, देख लीजिए क्या क्या सज्जाद अली ने गाया, बेशुमार गाने आप मुझे बेहतर जानते हैं, ठीक है। और वाहिद फनकार है पाकिस्तान का, जबकि हिंदुस्तान ने तरले मिनते की, एक दफा नहीं गया वहां रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, आप पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग बना लिया हुआ स्टूडियो, और इंशाल्लाह जब दोबारा आगाज करूंगा, शुरू में सज्जाद अली का थोड़ा सा तारुफ और दूंगा। ये वो सज्जाद अली हैं
जब ए आर रहमान जब मैंने जिक्र किया, उनसे पूछा गया कि आपको बरसर की हिंदो पाक में कौन सी आवाज लुभाती है दिल को आपके, उन्होंने कहा एक ही आवाज जिसकी टोन खूबसूरत है, जिसका लहजा खूबसूरत है, जिसकी आवाज में लोच बड़ा है, जिसकी आवाज सुर कहीं से मिस नहीं करता, बेताला कहीं नहीं होता, और वो सजादली। तो सजादली जो है इसी कसूरी घराने के चश्मे चराग हैं। तो सामीन इजाजत दीजिए, आज के इस प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले किस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।

में सेफ्टी इल्यूजन्स क्या होते हैं और ये किस तरह हमारे रियल लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, किस तरह रिसर्चर्स को प्रॉब्लम्स इनसे फेस करनी पड़ती है।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वॉज दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

इसके बाद नूरजहां ने 1960 से 1970 तक के अशरे में पंजाबी फिल्मों के लिए गाने गाए जो सुपरहिट हुए, और इनमें से बहुत से गीतों का शुमार सदाबहार गीतों में होने लगा।

नूरजहां ने 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए जिनमें से ज्यादातर मकबूले आम हुए। नस सदी से ज्यादा अरसा तक मौसीकी की सल्तनत और करोड़ों सामाइन के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत के हवाले से एशियाई लेजेंड दिलीप कुमार की अहलिया और माजी की मारूफ अदाकारा सायरा बानो का कहना है, मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्लेबैक सिंगिंग में जो उसलूब अंदाज वजा किया वो फिल्मी मौसीकी का लाजमी जुज बन गया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अक्सर ये बात करते हुए मलका तरन्नुम का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्डिंग की इजादात को मुतारिफ हुए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, इसलिए इस तकनीक को सीखने के लिए ना तो इंस्टीट्यूशन से और ना ही फनकारों की ट्रेनिंग का अहतमाम। हैरत अंगेज अमर ये था कि नूरजहां ने इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल किए बगैर जो काम किया वो आज भी अनोखा और मुनफरिद है।

मैडम नूर जहाँ एक अहद थी, एक अदाकारा, एक इदारा जो दुनिया फानी से तो कुछ कर गईं, लेकिन नस्लों तक के सीखने को बहुत कुछ छोड़ गईं। नूर जहाँ का शुमार इन फनकारों में होता है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने, बल्कि तरन्नुम के गाए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। 9 वर्ष की उम्र में नूर जहाँ की आवाज़ ने पंजाबी मौसीकार गुलाम अहमद चिश्ती की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उन्होंने नूरजहां के लिए खसूसी तौर पर नातें, गजलें और लोकगीत कंपोज किए। फिर नूरजहां का खानदान कलकत्ता मुंतकिल हो गया, जहां मारूफ गुलुकारा मुख्तार बेगम ने नूरजहां और इनकी दो बहनों की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स को भी इनके नाम तजवीज किए। 1935 में उन्होंने पिंडी कोड़ी से अदाकारी का आगाज किया। इसके बाद फिल्म मिस्र का सितारा में अदाकारी के साथ साथ कई गीतों को अपनी आवाज भी दी। 1937 में बनने वाली फिल्म हीर सयाल में हीर के बचपन का किरदार अदा किया। फिर वो लाहौर चली आईं और कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद वापस बम्बई चली गईं, जहाँ अदाकारी के साथ साथ उन्होंने गुरुकारी का सफर भी जारी रखा। वो कुछ अरसे बाद वापस चली गईं, सारी तवज्जो प्लेबैक से।

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विग दे, की लब दे फिरी बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नख्मों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया, सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा, मेरा सोहना शहर कसूर नहीं। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: Good morning, dear listeners. You are tuned into UCP Faculty Hour, and I'm your host, Nayab Afzal. I'm a lecturer at English Language Center, Faculty of Languages and Literature. Well, today we have a fantastic panel with us. Joining me is Dr. Habib Ghazi, who is an Associate Professor of English and Director of English Language Center. We also have Ayman Saqib, a bright student from the third semester of the Faculty of Management Science.

0: Sciences, and Mr. Shamir, a seventh semester student from Department of English. Well, I believe it's going to be an insightful session, so please stay tuned as we dive into an engaging discussion. Well, dear listeners, I'm going to ask my first question to Dr. Habib Ghazi. Having over 20 years of experience in teaching language and research across different countries, sir, jaise ki aapne UAE mein padhaya, Saudi Arabia mein padhaya, and shayad England mein bhi padhaya. So, what is your view? I mean, it has a significant difference between teaching in Pakistan or these other countries.
1: Thank you very much, Nayab. First of all, thanks for having me today. अब ये जो आपका सवाल है इसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा, डिफरेंस टीचिंग के हवाले से. तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की. इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, द वे इंग्लिश इज़ टॉट इन पाकिस्तान एंड द वे इट इज़ टॉट अब्रॉड, सो लेट्स डेल्व इनटू इट फर्स्ट.
0: बिल्कुल.
1: उसमें यह है कि मिसाल के तौर पर अब जैसे हमारे यहाँ आप अगर स्कूल की एजुकेशन देखें, and primarily I'm talking about our schools which follow conventional scheme of study.
0: Right.
1: तो उसमें English language teaching के हवाले से आपका सारा जो emphasis है वो रहता है reading और writing के ऊपर.
0: बिल्कुल सर, ऐसा ही है.
1: और जो assessment है वो भी reading and writing focused है. Not only that, उसमें जो एक learning, एक रट्टा के जरिए जो एक लर्निंग है उस पे ज्यादा फोकस है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो अब जब आपके स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, लाइक लेट मी कॉल देम फ्रेशर्स, फर्स्ट ईयर बीएस में जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेके यहाँ पे आता है, तो उसके पास आई ऑलवेज बिलीव्ड के जो वोकैबुलरी और ग्रामर के हवाले से उनका इनपुट उनके यहाँ बहुत ज्यादा है.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन the problem is they have never been given an opportunity to practice language skills. Aur skills se yahan pe meri murad four different skills hain, jaise listening hai, speaking hai, reading hai, writing hai, and all these skills are equally important. To aapki do skills 12 saal school mein ignore hui hoti hain.
0: Aisa hi hai sir.
1: To agar hum isi ko leke chalenge aage to aap phir wahi grammar padh rahe honge, वही कंपोजिशन लिख रहे होंगे, और वही आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लर्निंग बाय रोट रट्टे पे ही रहेगी. अब आपने जब ये कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ये है कि अगर आप यूएई में हैं, एंड बाय दैट आई मीन लाइक ऑल गल्फ कंट्रीज, और जहाँ पे इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गल्फ कंट्रीज, ग्लोबली आप जापान की मिसाल ले लें, आप चाइना की ले लें, आप कोरिया की ले लें, यू नो लाइक बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास जहाँ पे इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है विद अ फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट. तो वो ये सारी स्किल्स के ऊपर क्लासरूम के अंदर इक्वल एम्फेसिस के साथ चलते हैं. एक ये डिफरेंस है. सेकंड डिफरेंस ये है कि क्लासेस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं, यानी ज्यादा आप स्टूडेंट से काम करवाते हैं, एंड योर रोल एज ए टीचर इज जस्ट दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर. यू आर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स इन कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज इन द क्लासरूम. तो ये एक मेजर डिफरेंस है, और यहाँ पे यूसीपी में मैंने उसी डिफरेंस को अकोमोडेट करने की कोशिश की है बाय इंट्रोड्यूसिंग, एक तो कंटेंट चेंज किया, और कंटेंट हम कन्वेंशनल जो कंटेंट था उससे निकले, तो अब हमारे पास वो कंटेंट है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में जो के कहीं और अवेलेबल है. यानी दिस वे वी हैव अलाइंड आवरसेल्व्स विद ग्लोबल ईएलटी प्रैक्टिसेस. अब इसके साथ जो एक और चीज जुड़ी हुई है कि ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, बिकॉज टीचर्स को भी उसी हवाले से प्रॉपरली ट्रेंड किया गया है कि आपने फोर डिफरेंट स्किल्स को कैसे इम्पार्ट करना है और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है. और जो है जैसे कि लाइक आई ऑलवेज यूज टू से कि अगर इसको हम एक डिवीजन में जाएं, तो 70-30 की रेशियो है कि 30% टाइम जो है टीचर टॉकिंग टाइम, वो टीचर्स अगर 30% ऑक्यूपाई कर रहे हैं और 70% वो स्टूडेंट पे जा रहा है, तो इससे मैं ये कहूँगा कि दिस इज एन आइडियल लेसन।
0: सर, आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, जब हम पढ़ते होते थे तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इंग्लिश की क्लास पढ़ाने जो हमारे टीचर्स आते थे इंग्लिश के, वो हमें उर्दू में पढ़ाते थे इंग्लिश की क्लास। मतलब द स्पीकिंग और जो टीचर का इंस्ट्रक्शंस देने का मोड था वो हमेशा उर्दू में होता था। आई होप मेरे साथ शामीर और एमन भी एग्री करेंगे इस बात पे, बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स एंड दे हैव बीन फेसिंग दिस। सो एमन और शामीर, आप क्या कहेंगे इस बारे में, इंग्लिश अब तक किस तरह से पढ़ते आए?
2: अब तक इंग्लिश जो हमने पढ़ी है मोस्टली हमारी क्लास में आके उर्दू में कन्वर्सेशन चलती थी, ठीक है। लेकिन सरकाजी ने जो कोर्स हमें रिसर्च मेथडोलॉजी का पढ़ाया, सरकाजी यूजेस इंग्लिश मोस्टली इन द क्लासरूम, बट फॉर द बेटर कम्प्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स हु लैक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ही यूजेस बायलिंगुअल लैंग्वेजेस। ये उर्दू में भी कन्वर्सेशन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ बेहतर आ सके जिनको इंग्लिश पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट।
0: बिल्कुल एमन, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे, क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल से दोनों तरह के मोड से किया हुआ है ना, व्हेन योर टीचर वेलकमिंग एंड गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड इन उर्दू एज वेल। बिकॉज मुझे याद पड़ता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर किसी और कन्वेंशनल स्टाइल से पढ़ा और सेकेंड सेमेस्टर आपने कैम्ब्रिज स्टाइल से पढ़ा, तो आपका इनटेक क्या है इस पे?
3: आई डू बिलीव दैट एज आई वर टॉट बाय यू, आई रियली लाइक योर स्टाइल, बिकॉज बिफोर हैंड व्हेन आई वाज लर्निंग इट वाज दैट आई वाज doing the same things I had been doing since last 12 years, as Sir Kazi said, right? But when the system changed, I had a chance to improve my listening and especially my writing skills, I remember. Especially when it comes to the listening skills, many a times when we are watching movies or anything, we're just turning on our subtitles and doing that stuff. But when we had the chances to do quizzes and we had to listen stuff, we realized that, oh, this is something that we need to learn or we are learning, and it was a very good help, because bahut baar aise hota hai ki hame jab ek cheez ki insight mil jati hai ki oh we have to work on it, that's the main thing, jaise sir ne kaha ki ek provider hota hai, ek facilitator hota hai, so that's something that I believe.
0: तो सर काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस पे मिले, तो आपको सर ऐसा क्या चीज थी, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू ब्रिंग दिस न्यू मेथोडोलॉजी हियर इन पाकिस्तान हियर एट यूसीपी?
1: वो तो जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि एक स्ट्रांग रियलाइजेशन के टीचर्स जैसे उसे डेवलप करने की एक कोशिश कर रहे हैं स्किल, वो एक राइट मोड नहीं है। और अब मेरा जो क्योंकि एक्सपोजर जो था वो इंटरनेशनल था, और मैं उसको एक्सपीरियंस करके, रादर इट्स माय लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ से लाइक 12-13 इयर्स इन यू नो लाइक इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरे लिए ये मुश्किल इसको समझना तो नहीं था, समझना बस यही था कि इसको क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उस हवाले से एक डिसीजन लेना था, और ऑब्वियसली आपने जब डिसीजन लेते हैं तो दो तीन उसके पहलू हैं कि स्टूडेंट्स उसको कैसे लेंगे, कंटेंट जो हमने चेंज करना है उसमें चैलेंजेस क्या होंगे, और टीचर्स जो हैं लाइक आई ऑलवेज बिलीव्ड कि हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, तो उनको जस्ट एक मतलब सेशंस प्रोवाइड करने थे ट्रेनिंग के हवाले से। तो ये सारा हमने बिफोर हैंड हमने इसको प्रॉपरली उसको पहले विजुअलाइज किया, उसके ऊपर मेथडोलॉजीज तय की कि ये इन तीनों एस्पेक्ट्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा, और फिर हम चल पड़े और ये हो गया।
0: जी आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, जहां हमारा इस वक्त एक शो चल रहा है यूसीपी फैकल्टी आर, जिसका मेन फोकस है इस वक्त बियॉन्ड द क्लासरूम, ELT एंड रिसर्च। हम अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद वापस आते हैं।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.
5: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।